शहर की मैं दुश्मनी से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता, अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता।

0: Tommy, give for them. That is the problem.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: जिसने चोट न खाई हो, जिसने चोट न खाई हो, वो चेहरा क्या पहचानेगा। दिल का दर्द तो यारो कोई दिल वाला ही जानेगा।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।
2: मजबूरी की आंधी में घिर जाते हैं, सूखे पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं, हद से आगे लोगों की ये आदत है, वादे करके वादों से फिर जाते हैं।

मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था, मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था। दूर दूर थी खुशी और गम करीब था, धूप थी ना छांव थी, सुबह थी ना शाम थी, मेरे प्यार का सफर इस कदर अजीब था।

प्यार की उमंग भी क्या अजब उमंग है, इसके दिल से दूर है उसके संग संग है। किसको मैं सही कहूँ किसको मैं गलत कहूँ, अपनी अपनी रीत है अपना अपना ढंग है।

मोहब्बत के चमन में दिलकशी, आए तो क्यों आए गुलों में पहली जैसी ताजगी, आए तो क्यों आए सितारे आसमां की सेज पर बेहोश सोए हैं, उजाला घर में क्या हो चांदनी, आए तो क्यों आए अंधेरा ही अंधेरा हो जहां गम का बसेरा हो, वहां रूठी हुई कोई खुशी, आए तो क्यों आए तुम्हारी बेवफाई ने मुझे बर्बाद कर डाला, मेरे खामोश होंठों पर हंसी, आए तो क्यों आए।

अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत कोशिश करूं, फिर भी समझ में आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से होश आया है मेरी नौजवानी को। मेरा दिल और कोई चोट हरगिज खा नहीं सकता। मेरा दावा ये है उसको मसीहाई नहीं आती। मोहब्बत से जो दिल के जख्म को सहला नहीं सकता। तुम्हारे पास आंसू हैं, जहां के पास ताने हैं। इधर भी जा नहीं सकता, उधर भी जा नहीं सकता।

गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, इंसानियत हो जिसमें ऐसी अदा नहीं है, सबका है ध्यान अपनी अपनी जरूरतों पर, चाहत की गुफ्तगू में कोई मजा नहीं है, बाहर से आशनाई अंदर से बेवफाई, दुनिया में इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, चेहरे बदल बदल के दुनिया को लूटते हैं, ये संग दिल हैं इनके दिल में वफा नहीं है।

मेरा हर ख्वाब झूठा है, मेरी हर आस झूठी है, मेरे नाजुक ख्यालों की कड़ी 100 बार टूटी है। तुम ही सोचो मोहब्बत के सफर में बेवफाई का, तुम्हें इल्जाम कैसे दूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।

मैं तुझको मीत अपना मानता हूँ, तू कितने पानी में है जानता हूँ। ज़बां पे तेरी कुछ है, दिल में कुछ है, तेरी फितरत को मैं पहचानता हूँ।

दिल का आईना चूर चूर किया, मेरी खुशियों से मुझको दूर किया, बेवजह मुझसे फेर ली आंखें, मेरी जा मैंने क्या कसूर किया।

थोड़ी सी जफा दे दी, थोड़ी सी वफा दे दी, मरने की कसम दे दी, जीने की दुआ दे दी, दम आ गया होंठों पर, उठता है धुआं दिल से, बीमारे मोहब्बत को ये कैसी दवा दे दी। तू कैसा मसीहा है, तुझको ना तरस आया, एक तेरा सहारा था, तूने भी दगा दे दी।

वो सुहानी चांदनी रातें, वो सुहानी चांदनी रातें हमें सब याद हैं। चांदनी में प्यार की बातें हमें सब याद हैं। बिजलियों की वो चमक, वो बादलों की घन गरज और वो सावन की बरसातें हमें सब याद हैं। वो बिछड़ना और वो मिलना आज तक भूले नहीं, वो जुदाई वो मुलाकातें हमें सब याद हैं।

दोनों की वफादार मोहब्बत के सहारे धरती पे उतर आते थे किस्मत के सितारे। सीने में सुलग उठता था एहसास वफा का, काबू में नहीं रहते थे जज्बात हमारे।

गालों पे ये काली बदलियां क्यों छा गई? क्या किसी आवारा तितली की अदाएं भा गई? क्या कोई अनजान राही तुझको छूकर चल दिया? तेरे माथे पे ये आखिर सिलवटे क्यों आ गई? किस लिए तू चुप है, किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? क्या किसी दिलदार से आंखें

मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, उसकी यादों को रखा है मैंने अपने दिल में सजा के, उसकी काली काली आँखें, उसका चेहरा, उसकी रंगत दिल के शीशे में फिट कर दी मैंने सबकी आँख बचा के, कैसी दूरी क्या मजबूरी, कैसी आहें कैसे आंसू, झूम रहा हूँ नाच रहा हूँ घर की दौलत घर में लाके।

0: हमेशा की जुदाई हो गई है, हमेशा की जुदाई हो गई है, वो लड़की अब पराई हो गई है।
1: इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा था उसने।

0: लगता है तुमने भी प्यार किया था, कहीं कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: बहुत धोखे दिए मुझको, नजर से दूर जा निकला, उसे अपना मैं समझा था, वो जालिम बेवफा निकला।

मीठी मीठी चाहत का इजहार करो, प्यार का रस बरसाओ मुझ पे, देखो मत इनकार करो। धीरज की नदिया का पानी सूख गया तो क्या होगा, जन्म जन्म की प्यासी हूँ मैं, साजन मुझसे

पास तुम्हारे आकर बैठूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। प्यार करूं मैं तुमसे लेकिन छूने से मजबूर रहूं।

बरसेंगे फिर झूम के बादल, बरसेंगे फिर झूम के बादल, आज नहीं तो कल। तेरा अपना होगा हर पल, आज नहीं तो कल। तेरे सर पे साया बनके फिर लहराएगा तेरी उम्मीदों का आंचल, आज नहीं तो कल। अपना ठौर ठिकाना एक दिन तू भी पालेगा, आस के पंछी तू उड़ता चल, आज नहीं तो कल। मोड़ हजारों आए फिर भी डर के मत रुकना, आगे बढ़ते रहना पागल, आज नहीं तो कल।

जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, कौन सी है इसकी मंजिल इसका अंदाजा नहीं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है मगर कितना गहरा है ये साहिल इसका अंदाजा नहीं। वक्त का तूफान कब आएगा किसी को क्या खबर, कब उजड़ जाए ये महफिल इसका अंदाजा नहीं।

सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, मगर अपनी पहली वफा मांगता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, कोई भी रिश्ता हो उसको तोड़ दूं, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, तुझको जो देखें वो आंखें फोड़ दूं।

आंधियों का मुझे गम, ना आंधियों का मुझे गम, न फिक्र तूफा की, अगर है फिक्र तो बस अपनी जाने जाना की। तेरी गली से कोई बन संवर के गुजरे तो उड़ा के फेंक दूं मैं धज्जियां गरेबां की। कोई भी शख्स तेरा नाम लेके देखे तो जबान काट लूं उस बदतमीज इंसान की।

तू मेरी आशिकी में गिरफ्तार तो हुआ, पहले तू बेवफा था, वफादार तो हुआ, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, वो फासले मिटाने का इकरार तो हुआ, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, तेरी तरफ से प्यार का इजहार तो हुआ।

मेरी आंखों से मेरे दिल में समाकर तूने मुझको अपना लिया, सीने से लगाकर तूने मुझको मालूम न था दर्द मोहब्बत ऐ दोस्त, मैं था पत्थर मुझे दीवाना बनाकर तूने।

ना समझ था मैं बड़ा नादान था, ना समझ था मैं बड़ा नादान था, प्यार की तहजीब से अनजान था, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, मैं बहुत आवारा मेरी जान था।

तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे शरा

0: न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा।

भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर्द से सवाली नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ।

क्या सफर है और क्या सामान है, जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफर है और क्या सामान है, मेरे गम को भी

दुनिया के काम का, अरे दिल भी तुम्हें खुदा ने दिया 10 ग्राम का।

0: आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे।
1: थोड़ी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है।
0: यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है।

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा के बारे में।

अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है। अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है। ये जवानी का जमाना भी अजब होता है। कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया, बोलने वाले को एहसास ही कब

शहर की मैं दुश्मनी से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता, अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: जिसने चोट न खाई हो, जिसने चोट न खाई हो, वो चेहरा क्या पहचानेगा। दिल का दर्द तो यारो कोई दिल वाला ही जानेगा।

तन्हाई में रोता है, भरी महफिल में दिल हंसता है। तन्हाई में रोता है, किसी को याद करना भी बड़ा दुश्वार होता है।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।
2: मजबूरी की आंधी में घिर जाते हैं, सूखे पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं, हद से आगे लोगों की ये आदत है, वादे करके वादों से फिर जाते हैं।

मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था, मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था। दूर दूर थी खुशी और गम करीब था, धूप थी ना छांव थी, सुबह थी ना शाम थी, मेरे प्यार का सफर इस कदर अजीब था।

प्यार की उमंग भी क्या अजब उमंग है, इसके दिल से दूर है उसके संग संग है। किसको मैं सही कहूँ किसको मैं गलत कहूँ, अपनी अपनी रीत है अपना अपना ढंग है।

मोहब्बत के चमन में दिलकशी, आए तो क्यों आए गुलों में पहली जैसी ताजगी, आए तो क्यों आए। सितारे आसमां की सेज पर बेहोश सोए हैं, उजाला घर में क्या हो चांदनी, आए तो क्यों आए। अंधेरा ही अंधेरा हो जहां गम का बसेरा हो, वहां रूठी हुई कोई खुशी, आए तो क्यों आए। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे बर्बाद कर डाला, मेरे खामोश होंठों पर हंसी, आए तो क्यों आए।

अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत कोशिश करूं, फिर भी समझ में आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से होश आया है मेरी नौजवानी को, मेरा दिल और कोई चोट हरगिज खा नहीं सकता। मेरा दावा ये है उसको मसीहाई नहीं आती, मोहब्बत से जो दिल के जख्म को सहला नहीं सकता। तुम्हारे पास आंसू हैं, जहां के पास ताने हैं, इधर भी जा नहीं सकता, उधर भी जा नहीं सकता।

गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, इंसानियत हो जिसमें ऐसी अदा नहीं है, सबका है ध्यान अपनी अपनी जरूरतों पर, चाहत की गुफ्तगू में कोई मजा नहीं है, बाहर से आशनाई अंदर से बेवफाई, दुनिया में इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, चेहरे बदल बदल के दुनिया को लूटते हैं, ये संग दिल हैं इनके दिल में वफा नहीं है।

मेरा हर ख्वाब झूठा है, मेरी हर आस झूठी है, मेरे नाजुक ख्यालों की कड़ी 100 बार टूटी है। तुम ही सोचो मोहब्बत के सफर में बेवफाई का, तुम्हें इल्जाम कैसे दूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।

मैं तुझको मीत अपना मानता हूँ, तू कितने पानी में है जानता हूँ। ज़बां पे तेरी कुछ है, दिल में कुछ है, तेरी फितरत को मैं पहचानता हूँ।

दिल का आईना चूर चूर किया, मेरी खुशियों से मुझको दूर किया, बेवजह मुझसे फेर ली आंखें, मेरी जा मैंने क्या कसूर किया।

थोड़ी सी जफा दे दी, थोड़ी सी वफा दे दी, मरने की कसम दे दी, जीने की दुआ दे दी, दम आ गया होंठों पर, उठता है धुआं दिल से, बीमारे मोहब्बत को ये कैसी दवा दे दी। तू कैसा मसीहा है, तुझको न तरस आया, एक तेरा सहारा था, तूने भी दगा दे दी।

वो सुहानी चांदनी रातें, वो सुहानी चांदनी रातें हमें सब याद हैं। चांदनी में प्यार की बातें हमें सब याद हैं। बिजलियों की वो चमक, वो बादलों की घन गरज और वो सावन की बरसातें हमें सब याद हैं। वो बिछड़ना और वो मिलना आज तक भूले नहीं, वो जुदाई वो मुलाकातें हमें सब याद हैं।

वफादार मोहब्बत के सहारे धरती पे उतर आते थे किस्मत के सितारे। सीने में सुलग उठता था एहसास वफा का, काबू में नहीं रहते थे जज्बात हमारे।

तेरे गालों पे ये काली बदलियां क्यों छा गई? क्या किसी आवारा तितली की अदाएं भा गई? क्या कोई अनजान राही तुझको छूकर चल दिया? तेरे माथे पे ये आखिर सिलवटे क्यों आ गई? किस लिए तू चुप है, किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? क्या किसी दिलदार से आंखें

बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, जिंदगी मेरे लिए जैसे मुसीबत हो गई। जाने क्यों घर के दरो दीवार से बातें करूं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब ये हालत हो गई।

मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, उसकी यादों को रखा है मैंने अपने दिल में सजा के, उसकी काली काली आँखें उसका चेहरा उसकी रंगत, दिल के शीशे में फिट कर दी मैंने सबकी आँख बचा के, कैसी दूरी क्या मजबूरी कैसी आहें कैसे आंसू, झूम रहा हूँ नाच रहा हूँ घर की दौलत घर में लाके।

0: हमेशा की जुदाई हो गई है, हमेशा की जुदाई हो गई है, वो लड़की अब पराई हो गई है।
1: इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा था उसने।

एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होंठों पे कभी आके दुहाई नहीं देता, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है दिखाई

0: लगता है तुमने भी प्यार किया था, कहीं कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: बहुत धोखे दिए मुझको, नजर से दूर जा निकला, उसे अपना मैं समझा था, वो जालिम बेवफा निकला।

मीठी मीठी चाहत का इजहार करो, प्यार का रस बरसाओ मुझ पे, देखो मत इनकार करो। धीरज की नदिया का पानी सूख गया तो क्या होगा, जन्म जन्म की प्यासी हूँ मैं, साजन मुझसे

कल तुम न भूल जाना कहीं आज की कसम, कल तुम न भूल जाना कहीं आज की कसम, मैं स्त्री हूँ तुमको मेरी लाज की कसम।

पास तुम्हारे आकर बैठूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं, प्यार करूं मैं तुमसे लेकिन छूने से मजबूर रहूं।

बरसेंगे फिर झूम के बादल, बरसेंगे फिर झूम के बादल, आज नहीं तो कल। तेरा अपना होगा हर पल, आज नहीं तो कल। तेरे सर पे साया बनके फिर लहराएगा तेरी उम्मीदों का आंचल, आज नहीं तो कल। अपना ठौर ठिकाना एक दिन तू भी पालेगा, आस के पंछी तू उड़ता चल, आज नहीं तो कल। मोड़ हजारों आए फिर भी डर के मत रुकना, आगे बढ़ते रहना पागल, आज नहीं तो कल।

जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, कौन सी है इसकी मंजिल इसका अंदाजा नहीं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है मगर कितना गहरा है ये साहिल इसका अंदाजा नहीं। वक्त का तूफान कब आएगा किसी को क्या खबर, कब उजड़ जाए ये महफिल इसका अंदाजा नहीं।

सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, मगर अपनी पहली वफा मांगता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, कोई भी रिश्ता हो उसको तोड़ दूं, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, तुझको जो देखें वो आंखें फोड़।

तू मेरी आशिकी में गिरफ्तार तो हुआ, पहले तू बेवफा था, वफादार तो हुआ। दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले। वो फासले मिटाने का इकरार तो हुआ, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम। तेरी तरफ से प्यार का इजहार तो हुआ,

मेरी आंखों से मेरे दिल में समाकर तूने मुझको अपना लिया, सीने से लगाकर तूने मुझको मालूम न था दर्द मोहब्बत ऐ दोस्त, मैं था पत्थर मुझे दीवाना बनाकर तूने।

ना समझ था मैं बड़ा नादान था, ना समझ था मैं बड़ा नादान था, प्यार की तहजीब से अनजान था, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, मैं बहुत आवारा मेरी जान था।

तो मोहब्बत करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन?

अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे

0: न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के।

0: पर हम लब खामोश, अब तो वो कुछ और भी प्यारे नजर आने लगे।
1: एक बार इशारा तो कर दे, एक बार इशारा तो कर दे।
0: ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं।

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा।

0: आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे।
1: चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है।
0: यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है।

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा के बारे में।

अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, ये जवानी का जमाना भी अजब होता है। कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया, बोलने वाले को एहसास ही कब

शहर की मैं दुश्मनी से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता, अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।
2: मजबूरी की आंधी में घिर जाते हैं, सूखे पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं, हद से आगे लोगों की ये आदत है, वादे करके वादों से फिर जाते हैं।

मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था, मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था। दूर दूर थी खुशी और गम करीब था, धूप थी ना छांव थी, सुबह थी ना शाम थी, मेरे प्यार का सफर इस कदर अजीब था।

प्यार की उमंग भी क्या अजब उमंग है, इसके दिल से दूर है उसके संग संग है। किसको मैं सही कहूँ किसको मैं गलत कहूँ, अपनी अपनी रीत है अपना अपना ढंग है।

मोहब्बत के चमन में दिलकशी आए तो क्यों आए, गुलों में पहली जैसी ताजगी आए तो क्यों आए। सितारे आसमां की सेज पर बेहोश सोए हैं, उजाला घर में क्या हो चांदनी आए तो क्यों आए। अंधेरा ही अंधेरा हो जहां गम का बसेरा हो, वहां रूठी हुई कोई खुशी आए तो क्यों आए। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे बर्बाद कर डाला, मेरे खामोश होंठों पर हंसी आए तो क्यों आए।

अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत कोशिश करूं, फिर भी समझ में आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से होश आया है मेरी नौजवानी को, मेरा दिल और कोई चोट हरगिज खा नहीं सकता। मेरा दावा ये है उसको मसीहाई नहीं आती, मोहब्बत से जो दिल के जख्म को सहला नहीं सकता। तुम्हारे पास आंसू हैं, जहां के पास ताने हैं, इधर भी जा नहीं सकता, उधर भी जा नहीं सकता।

गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, इंसानियत हो जिसमें ऐसी अदा नहीं है, सबका है ध्यान अपनी अपनी जरूरतों पर, चाहत की गुफ्तगू में कोई मजा नहीं है, बाहर से आशनाई अंदर से बेवफाई, दुनिया में इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, चेहरे बदल बदल के दुनिया को लूटते हैं, ये संग दिल हैं इनके दिल में वफा नहीं है।

मेरा हर ख्वाब झूठा है, मेरी हर आस झूठी है, मेरे नाजुक ख्यालों की कड़ी 100 बार टूटी है। तुम ही सोचो मोहब्बत के सफर में बेवफाई का, तुम्हें इल्जाम कैसे दूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।

दिल का आईना चूर चूर किया, मेरी खुशियों से मुझको दूर किया, बेवजह मुझसे फेर ली आंखें, मेरी जा मैंने क्या कसूर किया।

थोड़ी सी जफा दे दी, थोड़ी सी वफा दे दी, मरने की कसम दे दी, जीने की दुआ दे दी, दम आ गया होंठों पर, उठता है धुआं दिल से, बीमारे मोहब्बत को ये कैसी दवा दे दी। तू कैसा मसीहा है, तुझको ना तरस आया, एक तेरा सहारा था, तूने भी दगा दे दी।

वो सुहानी चांदनी रातें हमें सब याद हैं। चांदनी में प्यार की बातें हमें सब याद हैं। बिजलियों की वो चमक, वो बादलों की घन गरज और वो सावन की बरसातें हमें सब याद हैं। वो बिछड़ना और वो मिलना आज तक भूले नहीं। वो जुदाई, वो मुलाकातें हमें सब याद हैं।

वफादार मोहब्बत के सहारे धरती पे उतर आते थे किस्मत के सितारे। सीने में सुलग उठता था एहसास वफा का, काबू में नहीं रहते थे जज्बात हमारे।

तेरे गालों पे ये काली बदलियां क्यों छा गई? क्या किसी आवारा तितली की अदाएं भा गई? क्या कोई अनजान राही तुझको छूकर चल दिया? तेरे माथे पे ये आखिर सिलबटे क्यों आ गई? किस लिए तू चुप है, किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? क्या किसी दिलदार से आ

बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, जिंदगी मेरे लिए जैसे मुसीबत हो गई। जाने क्यों घर के दरो दीवार से बातें करूं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब ये हालत हो गई।

मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, उसकी यादों को रखा है मैंने अपने दिल में सजा के, उसकी काली काली आँखें उसका चेहरा उसकी रंगत, दिल के शीशे में फिट कर दी मैंने सबकी आँख बचा के, कैसी दूरी क्या मजबूरी कैसी आहें कैसे आंसू, झूम रहा हूँ नाच रहा हूँ घर की दौलत घर में लाके रख।

0: हमेशा की जुदाई हो गई है, हमेशा की जुदाई हो गई है, वो लड़की अब पराई हो गई है।
1: इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा था उसने।

एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होंठों पे कभी आके दुहाई नहीं देता, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है दिखाई नहीं देता।

0: लगता है तुमने भी प्यार किया था, कहीं कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: बहुत धोखे दिए मुझको, नजर से दूर जा निकला, उसे अपना मैं समझा था, वो जालिम बेवफा निकला।

सवेरे मीठी मीठी चाहत का इजहार करो, प्यार का रस बरसाओ मुझ पे, देखो मत इनकार करो। धीरज की नदिया का पानी सूख गया तो क्या होगा, जन्म जन्म की प्यासी हूँ मैं, साजन मुझसे

पास तुम्हारे आकर बैठूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। प्यार करूं मैं तुमसे लेकिन छूने से मजबूर रहूं।

बरसेंगे फिर झूम के बादल, बरसेंगे फिर झूम के बादल, आज नहीं तो कल। तेरा अपना होगा हर पल, आज नहीं तो कल। तेरे सर पे साया बनके फिर लहराएगा तेरी उम्मीदों का आंचल, आज नहीं तो कल। अपना ठौर ठिकाना एक दिन तू भी पालेगा, आस के पंछी तू उड़ता चल, आज नहीं तो कल। मोड़ हजारों आए फिर भी डर के मत रुकना, आगे बढ़ते रहना पागल, आज नहीं तो कल।

जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, कौन सी है इसकी मंजिल इसका अंदाजा नहीं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है मगर कितना गहरा है ये साहिल इसका अंदाजा नहीं। वक्त का तूफान कब आएगा किसी को क्या खबर, कब उजड़ जाए ये महफिल इसका अंदाजा नहीं।

सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, मगर अपनी पहली वफा मांगता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, कोई भी रिश्ता हो उसको तोड़ दूं, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, तुझको जो देखें वो आंखें फोड़ दूं।

आंधियों का मुझे गम, ना आंधियों का मुझे गम, न फिक्र तूफान की, अगर है फिक्र तो बस अपनी जाने जाना की। तेरी गली से कोई बन संवर के गुजरे तो उड़ा के फेंक दूं मैं धज्जियां गरेबां की। कोई भी शख्स तेरा नाम लेके देखे तो जबान काट लूं उस बदतमीज इंसान की।

तू मेरी आशिकी में गिरफ्तार तो हुआ। पहले तू बेवफा था, वफादार तो हुआ। दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले। वो फासले मिटाने का इकरार तो हुआ। गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम। तेरी तरफ से प्यार का इजहार तो हुआ।

मेरी आंखों से मेरे दिल में समाकर तूने मुझको अपना लिया, सीने से लगाकर तूने मुझको मालूम न था दर्द मोहब्बत ऐ दोस्त, मैं था पत्थर मुझे दीवाना बनाकर तूने।

ना समझ था मैं बड़ा नादान था, ना समझ था मैं बड़ा नादान था, प्यार की तहजीब से अनजान था, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, मैं बहुत आवारा मेरी जान था।

मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

0: न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तू मां जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा।

0: पहुंचा, फूल मियार तक नहीं पहुंचा, दामने यार तक नहीं पहुंचा, हो गया वो कफस से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना,
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर्द से सवाली नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ।

काम का है ना दुनिया के काम का, अरे दिल भी तुम्हें खुदा ने दिया 10 ग्राम का।

0: आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहनी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहनी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे।
1: चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है।
0: यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है।

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा के।

भी मैं दुश्मनी से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता, अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता।

0: আমি কি বললাম? That is the problem.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
2: जिसने चोट न खाई हो, जिसने चोट न खाई हो, वो चेहरा क्या पहचानेगा? दिल का दर्द तो यारो कोई दिल वाला ही जानेगा।

मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था, मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था। दूर दूर थी खुशी और गम करीब था, धूप थी ना छांव थी, सुबह थी ना शाम थी, मेरे प्यार का सफर इस कदर अजीब था।

प्यार की उमंग भी क्या अजब उमंग है, इसके दिल से दूर है उसके संग संग है। किसको मैं सही कहूँ किसको मैं गलत कहूँ, अपनी अपनी रीत है अपना अपना ढंग है।

मोहब्बत के चमन में दिलकशी आए तो क्यों आए, गुलों में पहली जैसी ताजगी आए तो क्यों आए। सितारे आसमां की सेज पर बेहोश सोए हैं, उजाला घर में क्या हो चांदनी आए तो क्यों आए। अंधेरा ही अंधेरा हो जहां गम का बसेरा हो, वहां रूठी हुई कोई खुशी आए तो क्यों आए। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे बर्बाद कर डाला, मेरे खामोश होंठों पर हंसी आए तो क्यों आए।

अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत कोशिश करूं, फिर भी समझ में आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से होश आया है मेरी नौजवानी को, मेरा दिल और कोई चोट हरगिज खा नहीं सकता। मेरा दावा ये है उसको मसीहाई नहीं आती, मोहब्बत से जो दिल के जख्म को सहला नहीं सकता। तुम्हारे पास आंसू हैं, जहां के पास ताने हैं, इधर भी जा नहीं सकता, उधर भी जा नहीं सकता।

गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है। इंसानियत हो जिसमें ऐसी अदा नहीं है, सबका है ध्यान अपनी अपनी जरूरतों पर, चाहत की गुफ्तगू में कोई मजा नहीं है। बाहर से आशनाई अंदर से बेवफाई, दुनिया में इस मर्ज की कोई दवा नहीं है। चेहरे बदल बदल के दुनिया को लूटते हैं, ये संग दिल हैं इनके दिल में वफा नहीं है।

मेरा हर ख्वाब झूठा है, मेरी हर आस झूठी है, मेरे नाजुक ख्यालों की कड़ी 100 बार टूटी है। तुम ही सोचो मोहब्बत के सफर में बेवफाई का, तुम्हें इल्जाम कैसे दूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।

मैं तुझको मीत अपना मानता हूँ, तू कितने पानी में है जानता हूँ। ज़बां पे तेरी कुछ है, दिल में कुछ है, तेरी फितरत को मैं पहचानता हूँ।

दिल का आईना चूर चूर किया, मेरी खुशियों से मुझको दूर किया, बेवजह मुझसे फेर ली आँखें, मेरी जा मैंने क्या कसूर किया।

थोड़ी सी जफा दे दी, थोड़ी सी वफा दे दी, मरने की कसम दे दी, जीने की दुआ दे दी। दम आ गया होंठों पर, उठता है धुआं दिल से, बीमारे मोहब्बत को ये कैसी दवा दे दी। तू कैसा मसीहा है, तुझको न तरस आया, एक तेरा सहारा था, तूने भी दगा दे दी।

वो सुहानी चांदनी रातें, वो सुहानी चांदनी रातें हमें सब याद हैं। चांदनी में प्यार की बातें हमें सब याद हैं। बिजलियों की वो चमक, वो बादलों की घन गरज और वो सावन की बरसातें हमें सब याद हैं। वो बिछड़ना और वो मिलना आज तक भूले नहीं, वो जुदाई वो मुलाकातें हमें सब याद हैं।

वफादार मोहब्बत के सहारे धरती पे उतर आते थे किस्मत के सितारे। सीने में सुलग उठता था एहसास वफा का, काबू में नहीं रहते थे जज्बात हमारे।

तेरे गालों पे ये काली बदलियां क्यों छा गई? क्या किसी आवारा तितली की अदाएं भा गई? क्या कोई अनजान राही तुझको छूकर चल दिया? तेरे माथे पे ये आखिर सिलबटे क्यों आ गई? किस लिए तू चुप है, किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? क्या किसी दिलदार से आंखें तेरी

बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, जिंदगी मेरे लिए जैसे मुसीबत हो गई। जाने क्यों घर के दरो दीवार से बातें करूं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब ये हालत हो गई।

मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, उसकी यादों को रखा है मैंने अपने दिल में सजा के, उसकी काली काली आँखें उसका चेहरा उसकी रंगत, दिल के शीशे में फिट कर दी मैंने सबकी आँख बचा के, कैसी दूरी क्या मजबूरी कैसी आहें कैसे आंसू, झूम रहा हूँ नाच रहा हूँ घर की दौलत घर में लाके रख ली।

0: हमेशा की जुदाई हो गई है, हमेशा की जुदाई हो गई है, वो लड़की अब पराई हो गई है।
1: इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा था उसने।

संगीत सुनाई नहीं देता, एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होंठों पे कभी आके दुहाई नहीं देता, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है दिखाई नहीं देता।

0: लगता है तुमने भी प्यार किया था, कहीं कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: बहुत धोखे दिए मुझको, नजर से दूर जा निकला, उसे अपना मैं समझा था, वो जालिम बेवफा निकला।

मेरे मीठी मीठी चाहत का इजहार करो, प्यार का रस बरसाओ मुझ पे, देखो मत इनकार करो। धीरज की नदिया का पानी सूख गया तो क्या होगा, जन्म जन्म की प्यासी हूँ मैं, साजन मुझसे प्यार।

पास तुम्हारे आकर बैठूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। प्यार करूं मैं तुमसे लेकिन छूने से मजबूर रहूं।

बरसेंगे फिर झूम के बादल, बरसेंगे फिर झूम के बादल, आज नहीं तो कल। तेरा अपना होगा हर पल, आज नहीं तो कल। तेरे सर पे साया बनके फिर लहराएगा तेरी उम्मीदों का आंचल, आज नहीं तो कल। अपना ठौर ठिकाना एक दिन तू भी पालेगा, आस के पंछी तू उड़ता चल, आज नहीं तो कल। मोड़ हजारों आए फिर भी डर के मत रुकना, आगे बढ़ते रहना पागल, आज नहीं तो कल।

जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, कौन सी है इसकी मंजिल इसका अंदाजा नहीं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है मगर कितना गहरा है ये साहिल इसका अंदाजा नहीं। वक्त का तूफान कब आएगा किसी को क्या खबर, कब उजड़ जाए ये महफिल इसका अंदाजा नहीं।

सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, मगर अपनी पहली वफा मांगता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, कोई भी रिश्ता हो उसको तोड़ दूं, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, तुझको जो देखें वो आंखें फोड़ दूं।

आंधियों का मुझे गम, ना आंधियों का मुझे गम, न फिक्र तूफान की। अगर है फिक्र तो बस अपनी जाने जाना की। तेरी गली से कोई बन संवर के गुजरे तो उड़ा के फेंक दूं मैं धज्जियां गरेबां की। कोई भी शख्स तेरा नाम लेके देखे तो जबान काट लूं उस बदतमीज इंसान की।

तू मेरी आशिकी में गिरफ्तार तो हुआ, पहले तू बेवफा था, वफादार तो हुआ। दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले। वो फासले मिटाने का इकरार तो हुआ, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम। तेरी तरफ से प्यार का इजहार तो हुआ,

0: मेरी आंखों से मेरे दिल में समाकर तूने मुझको अपना लिया, सीने से लगाकर तूने मुझको मालूम न था दर्द मोहब्बत ऐ दोस्त, मैं था पत्थर मुझे दीवाना बनाकर तूने।
1: क्या

ना समझ था मैं बड़ा नादान था, ना समझ था मैं बड़ा नादान था, प्यार की तहजीब से अनजान था, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, मैं बहुत आवारा मेरी जान था।

तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

0: न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तू मां जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूं पल दो पल के लिए, आ निकला हूं पल दो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा।

0: आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे।
1: चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है।
0: यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है।

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा के बारे में।

अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, ये जवानी का जमाना भी अजब होता है। कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया, बोलने वाले को एहसास

शहर की मैं दुश्मनी से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता, अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: जिसने चोट न खाई हो, जिसने चोट न खाई हो, वो चेहरा क्या पहचानेगा। दिल का दर्द तो यारो कोई दिल वाला ही जानेगा।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।
2: मजबूरी की आंधी में घिर जाते हैं, सूखे पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं, हद से आगे लोगों की ये आदत है, वादे करके वादों से फिर जाते हैं।

मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था, मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था। दूर दूर थी खुशी और गम करीब था, धूप थी ना छांव थी, सुबह थी ना शाम थी, मेरे प्यार का सफर इस कदर अजीब था।

प्यार की उमंग भी क्या अजब उमंग है, इसके दिल से दूर है उसके संग संग है। किसको मैं सही कहूँ किसको मैं गलत कहूँ, अपनी अपनी रीत है अपना अपना ढंग है।

मोहब्बत के चमन में दिलकशी आए तो क्यों आए, गुलों में पहली जैसी ताजगी आए तो क्यों आए। सितारे आसमां की सेज पर बेहोश सोए हैं, उजाला घर में क्या हो चांदनी आए तो क्यों आए। अंधेरा ही अंधेरा हो जहां गम का बसेरा हो, वहां रूठी हुई कोई खुशी आए तो क्यों आए। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे बर्बाद कर डाला, मेरे खामोश होंठों पर हंसी आए तो क्यों आए।

अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत कोशिश करूं, फिर भी समझ में आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से होश आया है मेरी नौजवानी को। मेरा दिल और कोई चोट हरगिज खा नहीं सकता। मेरा दावा ये है उसको मसीहाई नहीं आती। मोहब्बत से जो दिल के जख्म को सहला नहीं सकता। तुम्हारे पास आंसू हैं, जहां के पास ताने हैं। इधर भी जा नहीं सकता, उधर भी जा नहीं सकता।

गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है। इंसानियत हो जिसमें ऐसी अदा नहीं है, सबका है ध्यान अपनी अपनी जरूरतों पर, चाहत की गुफ्तगू में कोई मजा नहीं है। बाहर से आशनाई अंदर से बेवफाई, दुनिया में इस मर्ज की कोई दवा नहीं है। चेहरे बदल बदल के दुनिया को लूटते हैं, ये संग दिल हैं इनके दिल में वफा नहीं है।

मेरा हर ख्वाब झूठा है, मेरी हर आस झूठी है, मेरे नाजुक ख्यालों की कड़ी 100 बार टूटी है। तुम ही सोचो मोहब्बत के सफर में बेवफाई का, तुम्हें इल्जाम कैसे दूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।

मैं तुझको मीत अपना मानता हूँ, तू कितने पानी में है जानता हूँ। ज़बां पे तेरी कुछ है, दिल में कुछ है, तेरी फितरत को मैं पहचानता हूँ।

दिल का आईना चूर चूर किया, मेरी खुशियों से मुझको दूर किया, बेवजह मुझसे फेर ली आंखें, मेरी जा मैंने क्या कसूर किया।

थोड़ी सी जफा दे दी, थोड़ी सी वफा दे दी, मरने की कसम दे दी, जीने की दुआ दे दी, दम आ गया होंठों पर, उठता है धुआं दिल से, बीमारे मोहब्बत को ये कैसी दवा दे दी। तू कैसा मसीहा है, तुझको ना तरस आया, एक तेरा सहारा था, तूने भी दगा दे दी।

वो सुहानी चांदनी रातें, वो सुहानी चांदनी रातें हमें सब याद हैं। चांदनी में प्यार की बातें हमें सब याद हैं। बिजलियों की वो चमक, वो बादलों की घन गरज और वो सावन की बरसातें हमें सब याद हैं। वो बिछड़ना और वो मिलना आज तक भूले नहीं, वो जुदाई वो मुलाकातें हमें सब याद हैं।

की वफादार मोहब्बत के सहारे धरती पे उतर आते थे किस्मत के सितारे। सीने में सुलग उठता था एहसास वफा का, काबू में नहीं रहते थे जज्बात हमारे।

गालों पे ये काली बदलियां क्यों छा गई? क्या किसी आवारा तितली की अदाएं भा गई? क्या कोई अनजान राही तुझको छूकर चल दिया? तेरे माथे पे ये आखिर सिलबटे क्यों आ गई? किस लिए तू चुप है, किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? क्या किसी दिलदार से आंखें तेरी

बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, जिंदगी मेरे लिए जैसे मुसीबत हो गई। जाने क्यों घर के दरो दीवार से बातें करूं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब ये हालत हो गई।

मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, उसकी यादों को रखा है मैंने अपने दिल में सजा के, उसकी काली काली आँखें उसका चेहरा उसकी रंगत, दिल के शीशे में फिट कर दी मैंने सबकी आँख बचा के, कैसी दूरी क्या मजबूरी कैसी आहें कैसे आंसू, झूम रहा हूँ नाच रहा हूँ घर की दौलत घर में लाके।

0: हमेशा की जुदाई हो गई है, हमेशा की जुदाई हो गई है, वो लड़की अब पराई हो गई है।
1: इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा था उसने।

एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होंठों पे कभी आके दुहाई नहीं देता, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है दिखाई नहीं देता।

0: कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: बहुत धोखे दिए मुझको नजर से दूर जा निकला, उसे अपना मैं समझा था, वो जालिम बेवफा निकला।

मेरे मीठी मीठी चाहत का इजहार करो, प्यार का रस बरसाओ मुझ पे, देखो मत इनकार करो। धीरज की नदिया का पानी सूख गया तो क्या होगा, जन्म जन्म की प्यासी हूँ मैं, साजन मुझसे प्यार।

पास तुम्हारे आकर बैठूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। प्यार करूं मैं तुमसे लेकिन छूने से मजबूर रहूं।

बरसेंगे फिर झूम के बादल, बरसेंगे फिर झूम के बादल, आज नहीं तो कल। तेरा अपना होगा हर पल, आज नहीं तो कल। तेरे सर पे साया बनके फिर लहराएगा तेरी उम्मीदों का आंचल, आज नहीं तो कल। अपना ठौर ठिकाना एक दिन तू भी पालेगा, आस के पंछी तू उड़ता चल, आज नहीं तो कल। मोड़ हजारों आए फिर भी डर के मत रुकना, आगे बढ़ते रहना पागल, आज नहीं तो कल।

अंदाजा नहीं कौन सी है इसकी मंजिल, इसका अंदाजा नहीं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है मगर कितना गहरा है ये साहिल, इसका अंदाजा नहीं। वक्त का तूफान कब आएगा किसी को क्या खबर, कब उजड़ जाए ये महफिल, इसका अंदाजा नहीं।

सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, मगर अपनी पहली वफा मांगता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, कोई भी रिश्ता हो उसको तोड़ दूं, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, तुझको जो देखें वो आंखें फोड़ दूं।

ना आंधियों का मुझे गम ना फिक्र तूफा की, अगर है फिक्र तो बस अपनी जाने जाना की। तेरी गली से कोई बन संवर के गुजरे तो उड़ा के फेंक दूं मैं धज्जियां गरेबां की। कोई भी शख्स तेरा नाम लेके देखे तो जबान काट लूं उस बदतमीज इंसान की।

तू मेरी आशिकी में गिरफ्तार तो हुआ, पहले तू बेवफा था, वफादार तो हुआ। दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, दोनों के बीच में थे जो चाहत के

मेरी आंखों से मेरे दिल में समाकर तूने मुझको अपना लिया, सीने से लगाकर तूने मुझको मालूम न था दर्द मोहब्बत ऐ दोस्त, मैं था पत्थर मुझे दीवाना बनाकर तूने।

ना समझ था मैं बड़ा नादान था, ना समझ था मैं बड़ा नादान था, प्यार की तहजीब से अनजान था, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, मैं बहुत आवारा मेरी जान था।

अश्कों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे शराब

0: कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा।

0: फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, दामने यार तक नहीं पहुंचा, हो गया वो कफस से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना,
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर्द से सवाली नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ।

0: आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे।
1: थोड़ी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है।
0: यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है।

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा के बारे में।

तन्हाई में रोता है, भरी महफिल में दिल हंसता है। तन्हाई में रोता है, किसी को याद करना भी बड़ा दुश्वार होता है।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।
2: मजबूरी की आंधी में घिर जाते हैं, सूखे पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं, हद से आगे लोगों की ये आदत है, वादे करके वादों से फिर जाते हैं।

मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था, मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था। दूर दूर थी खुशी और गम करीब था, धूप थी ना छांव थी, सुबह थी ना शाम थी, मेरे प्यार का सफर इस कदर अजीब था।

प्यार की उमंग भी क्या अजब उमंग है, इसके दिल से दूर है उसके संग संग है। किसको मैं सही कहूँ किसको मैं गलत कहूँ, अपनी अपनी रीत है अपना अपना ढंग है।

मोहब्बत के चमन में दिलकशी आए तो क्यों आए, गुलों में पहली जैसी ताजगी आए तो क्यों आए। सितारे आसमां की सेज पर बेहोश सोए हैं, उजाला घर में क्या हो चांदनी आए तो क्यों आए। अंधेरा ही अंधेरा हो जहां गम का बसेरा हो, वहां रूठी हुई कोई खुशी आए तो क्यों आए। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे बर्बाद कर डाला, मेरे खामोश होंठों पर हंसी आए तो क्यों आए।

अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत कोशिश करूं, फिर भी समझ में आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से होश आया है मेरी नौजवानी को, मेरा दिल और कोई चोट हरगिज खा नहीं सकता। मेरा दावा ये है उसको मसीहाई नहीं आती, मोहब्बत से जो दिल के जख्म को सहला नहीं सकता। तुम्हारे पास आंसू हैं, जहां के पास ताने हैं, इधर भी जा नहीं सकता, उधर भी जा नहीं सकता।

गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, इंसानियत हो जिसमें ऐसी अदा नहीं है। सबका है ध्यान अपनी अपनी जरूरतों पर, चाहत की गुफ्तगू में कोई मजा नहीं है। बाहर से आशनाई अंदर से बेवफाई, दुनिया में इस मर्ज की कोई दवा नहीं है। चेहरे बदल बदल के दुनिया को लूटते हैं, ये संग दिल हैं इनके दिल में वफा नहीं है।

मेरा हर ख्वाब झूठा है, मेरी हर आस झूठी है, मेरे नाजुक ख्यालों की कड़ी 100 बार टूटी है। तुम ही सोचो मोहब्बत के सफर में बेवफाई का, तुम्हें इल्जाम कैसे दूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।

मैं तुझको मीत अपना मानता हूँ, तू कितने पानी में है जानता हूँ, ज़बां पे तेरी कुछ है दिल में कुछ है, तेरी फितरत को मैं पहचानता हूँ।

दिल का आईना चूर चूर किया, मेरी खुशियों से मुझको दूर किया, बेवजह मुझसे फेर ली आँखें, मेरी जा मैंने क्या कसूर किया।

थोड़ी सी जफा दे दी, थोड़ी सी वफा दे दी, मरने की कसम दे दी, जीने की दुआ दे दी, दम आ गया होंठों पर, उठता है धुआं दिल से, बीमारे मोहब्बत को ये कैसी दवा दे दी। तू कैसा मसीहा है, तुझको न तरस आया, एक तेरा सहारा था, तूने भी दगा दे दी।

वो सुहानी चांदनी रातें, वो सुहानी चांदनी रातें हमें सब याद हैं। चांदनी में प्यार की बातें हमें सब याद हैं। बिजलियों की वो चमक, वो बादलों की घन गरज और वो सावन की बरसातें हमें सब याद हैं। वो बिछड़ना और वो मिलना आज तक भूले नहीं, वो जुदाई वो मुलाकातें हमें सब याद हैं।

की वफादार मोहब्बत के सहारे धरती पे उतर आते थे किस्मत के सितारे। सीने में सुलग उठता था एहसास वफा का, काबू में नहीं रहते थे जज्बात हमारे।

तेरे गालों पे ये काली बदलियां क्यों छा गई? क्या किसी आवारा तितली की अदाएं भा गई? क्या कोई अनजान राही तुझको छूकर चल दिया? तेरे माथे पे ये आखिर सिलवटे क्यों आ गई? किस लिए तू चुप है, किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? क्या किसी दिलदार से आंखें तेरी

बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, जिंदगी मेरे लिए जैसे मुसीबत हो गई। जाने क्यों घर के दरो दीवार से बातें करूं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब ये हालत हो गई।

मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, उसकी यादों को रखा है मैंने अपने दिल में सजा के, उसकी काली काली आँखें, उसका चेहरा, उसकी रंगत दिल के शीशे में फिट कर दी मैंने सबकी आँख बचा के, कैसी दूरी क्या मजबूरी, कैसी आहें कैसे आंसू, झूम रहा हूँ नाच रहा हूँ घर की दौलत घर में लाके।

0: हमेशा की जुदाई हो गई है, हमेशा की जुदाई हो गई है, वो लड़की अब पराई हो गई है।
1: इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा था उसने।

एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होंठों पे कभी आके दुहाई नहीं देता, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है दिखाई नहीं देता।

0: कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: बहुत धोखे दिए मुझको, नजर से दूर जा निकला, उसे अपना मैं समझा था, वो जालिम बेवफा निकला।

की मीठी चाहत का इजहार करो, प्यार का रस बरसाओ मुझ पे, देखो मत इनकार करो। धीरज की नदिया का पानी सूख गया तो क्या होगा, जन्म जन्म की प्यासी हूँ मैं, साजन मुझसे प्यार।

पास तुम्हारे आकर बैठूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। प्यार करूं मैं तुमसे लेकिन छूने से मजबूर रहूं।

बरसेंगे फिर झूम के बादल, बरसेंगे फिर झूम के बादल, आज नहीं तो कल। तेरा अपना होगा हर पल, आज नहीं तो कल। तेरे सर पे साया बनके फिर लहराएगा तेरी उम्मीदों का आंचल, आज नहीं तो कल। अपना ठौर ठिकाना एक दिन तू भी पालेगा, आस के पंछी तू उड़ता चल, आज नहीं तो कल। मोड़ हजारों आए फिर भी डर के मत रुकना, आगे बढ़ते रहना पागल, आज नहीं तो कल।

जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, कौन सी है इसकी मंजिल इसका अंदाजा नहीं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है मगर कितना गहरा है ये साहिल इसका अंदाजा नहीं। वक्त का तूफान कब आएगा किसी को क्या खबर, कब उजड़ जाए ये महफिल इसका अंदाजा नहीं।

सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, मगर अपनी पहली वफा मांगता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, कोई भी रिश्ता हो उसको तोड़ दूं, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, तुझको जो देखें वो आंखें फोड़ दूं।

आंधियों का मुझे गम, ना आंधियों का मुझे गम, न फिक्र तूफान की, अगर है फिक्र तो बस अपनी जाने जाना की। तेरी गली से कोई बन संवर के गुजरे तो उड़ा के फेंक दूं मैं धज्जियां गरेबां की। कोई भी शख्स तेरा नाम लेके देखे तो जबान काट लूं उस बदतमीज इंसान की।

तू मेरी आशिकी में गिरफ्तार तो हुआ। पहले तू बेवफा था, वफादार तो हुआ। दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले। वो फासले मिटाने का इकरार तो हुआ। गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम। तेरी तरफ से प्यार का इजहार तो हुआ।

मेरी आंखों से मेरे दिल में समाकर तूने मुझको अपना लिया, सीने से लगाकर तूने मुझको मालूम न था दर्द मोहब्बत ऐ दोस्त, मैं था पत्थर मुझे दीवाना बनाकर तूने।

ना समझ था मैं बड़ा नादान था, ना समझ था मैं बड़ा नादान था, प्यार की तहजीब से अनजान था, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, मैं बहुत आवारा मेरी जान था।

अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे

न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा।

0: नहीं पहुंचा, दामने यार तक नहीं पहुंचा, हो गया वो कफस से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना।
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर से सवाली

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ।

क्या सफर है और क्या सामान है, जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफर है और क्या सामान है, मेरे गम को भी

आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहनी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहनी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे। तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है।

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा के बारे में।

शहर की मैं दुश्मनी से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता, अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: जिसने चोट न खाई हो, जिसने चोट न खाई हो, वो चेहरा क्या पहचानेगा। दिल का दर्द तो यारो कोई दिल वाला ही जानेगा।

तन्हाई में रोता है, भरी महफिल में दिल हंसता है, तन्हाई में रोता है, किसी को याद करना भी बड़ा दुश्वार होता है।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।
2: मजबूरी की आंधी में घिर जाते हैं सूखे पत्ते, पतझड़ में गिर जाते हैं। हद से आगे लोगों की ये आदत है, वादे करके वादों से फिर जाते हैं।

मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था, मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था। दूर दूर थी खुशी और गम करीब था, धूप थी ना छांव थी, सुबह थी ना शाम थी, मेरे प्यार का सफर इस कदर अजीब था।

प्यार की उमंग भी क्या अजब उमंग है, इसके दिल से दूर है उसके संग संग है। किसको मैं सही कहूँ किसको मैं गलत कहूँ, अपनी अपनी रीत है अपना अपना ढंग है।

मोहब्बत के चमन में दिलकशी आए तो क्यों आए, गुलों में पहली जैसी ताजगी आए तो क्यों आए। सितारे आसमां की सेज पर बेहोश सोए हैं, उजाला घर में क्या हो चांदनी आए तो क्यों आए। अंधेरा ही अंधेरा हो जहां गम का बसेरा हो, वहां रूठी हुई कोई खुशी आए तो क्यों आए। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे बर्बाद कर डाला, मेरे खामोश होंठों पर हंसी आए तो क्यों आए।

अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत कोशिश करूं, फिर भी समझ में आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से होश आया है मेरी नौजवानी को। मेरा दिल और कोई चोट हरगिज खा नहीं सकता। मेरा दावा ये है उसको मसीहाई नहीं आती। मोहब्बत से जो दिल के जख्म को सहला नहीं सकता। तुम्हारे पास आंसू हैं, जहां के पास ताने हैं। इधर भी जा नहीं सकता, उधर भी जा नहीं सकता।

गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, इंसानियत हो जिसमें ऐसी अदा नहीं है, सबका है ध्यान अपनी अपनी जरूरतों पर, चाहत की गुफ्तगू में कोई मजा नहीं है, बाहर से आशनाई अंदर से बेवफाई, दुनिया में इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, चेहरे बदल बदल के दुनिया को लूटते हैं, ये संग दिल हैं इनके दिल में वफा नहीं है।

मेरा हर ख्वाब झूठा है, मेरी हर आस झूठी है, मेरे नाजुक ख्यालों की कड़ी 100 बार टूटी है। तुम ही सोचो मोहब्बत के सफर में बेवफाई का, तुम्हें इल्जाम कैसे दूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।

मैं तुझको मीत अपना मानता हूँ, तू कितने पानी में है जानता हूँ। ज़बां पे तेरी कुछ है, दिल में कुछ है, तेरी फितरत को मैं पहचानता हूँ।

दिल का आईना चूर चूर किया, मेरी खुशियों से मुझको दूर किया, बेवजह मुझसे फेर ली आँखें, मेरी जा मैंने क्या कसूर किया।

थोड़ी सी जफा दे दी, थोड़ी सी वफा दे दी, मरने की कसम दे दी, जीने की दुआ दे दी, दम आ गया होंठों पर, उठता है धुआं दिल से, बीमारे मोहब्बत को ये कैसी दवा दे दी। तू कैसा मसीहा है, तुझको ना तरस आया, एक तेरा सहारा था, तूने भी दगा दे दी।

वो सुहानी चांदनी रातें, वो सुहानी चांदनी रातें हमें सब याद हैं। चांदनी में प्यार की बातें हमें सब याद हैं। बिजलियों की वो चमक, वो बादलों की घन गरज और वो सावन की बरसातें हमें सब याद हैं। वो बिछड़ना और वो मिलना आज तक भूले नहीं, वो जुदाई वो मुलाकातें हमें सब याद हैं।

वफादार मोहब्बत के सहारे धरती पे उतर आते थे किस्मत के सितारे। सीने में सुलग उठता था एहसास वफा का, काबू में नहीं रहते थे जज्बात हमारे।

गालों पे ये काली बदलियां क्यों छा गई? क्या किसी आवारा तितली की अदाएं भा गई? क्या कोई अनजान राही तुझको छूकर चल दिया? तेरे माथे पे ये आखिर सिलबटे क्यों आ गई? किस लिए तू चुप है, किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? क्या किसी दिलदार से आंखें तेरी

बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, जिंदगी मेरे लिए जैसे मुसीबत हो गई। जाने क्यों घर के दरो दीवार से बातें करूं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब ये हालत हो गई।

मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, उसकी यादों को रखा है मैंने अपने दिल में सजा के, उसकी काली काली आँखें उसका चेहरा उसकी रंगत, दिल के शीशे में फिट कर दी मैंने सबकी आँख बचा के, कैसी दूरी क्या मजबूरी कैसी आहें कैसे आंसू, झूम रहा हूँ नाच रहा हूँ घर की दौलत घर में लाके रख।

0: हमेशा की जुदाई हो गई है, हमेशा की जुदाई हो गई है, वो लड़की अब पराई हो गई है।
1: इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा था उसने।

संगीत सुनाई नहीं देता, एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होंठों पे कभी आके दुहाई नहीं देता, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है दिखाई नहीं देता।

ख्वाब की ताबीर बनाने वाले, ख्वाब से ख्वाब की ताबीर बनाने वाले, तू भी क्या खूब है तस्वीर बनाने वाले।

0: लगता है तुमने भी प्यार किया था, कहीं कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: बहुत धोखे दिए मुझको, नजर से दूर जा निकला, उसे अपना मैं समझा था, वो जालिम बेवफा निकला।

सवेरे मीठी मीठी चाहत का इजहार करो, प्यार का रस बरसाओ मुझ पे, देखो मत इनकार करो। धीरज की नदिया का पानी सूख गया तो क्या होगा, जन्म जन्म की प्यासी हूँ मैं, साजन मुझसे प्यार

कल तुम न भूल जाना कहीं आज की कसम, कल तुम न भूल जाना कहीं आज की कसम, मैं स्त्री हूँ तुमको मेरी लाज की कसम।

पास तुम्हारे आकर बैठूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं, प्यार करूं मैं तुमसे लेकिन छूने से मजबूर रहूं।

बरसेंगे फिर झूम के बादल, बरसेंगे फिर झूम के बादल, आज नहीं तो कल। तेरा अपना होगा हर पल, आज नहीं तो कल। तेरे सर पे साया बनके फिर लहराएगा तेरी उम्मीदों का आंचल, आज नहीं तो कल। अपना ठौर ठिकाना एक दिन तू भी पालेगा, आस के पंछी तू उड़ता चल, आज नहीं तो कल। मोड़ हजारों आए फिर भी डर के मत रुकना, आगे बढ़ते रहना पागल, आज नहीं तो कल।

जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, कौन सी है इसकी मंजिल इसका अंदाजा नहीं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है मगर कितना गहरा है ये साहिल इसका अंदाजा नहीं। वक्त का तूफान कब आएगा किसी को क्या खबर, कब उजड़ जाए ये महफिल इसका अंदाजा नहीं।

सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, मगर अपनी पहली वफा मांगता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, कोई भी रिश्ता हो उसको तोड़ दूं, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, तुझको जो देखें वो आंखें फोड़।

ना आंधियों का मुझे गम न फिक्र तूफान की, अगर है फिक्र तो बस अपनी जाने जाना की। तेरी गली से कोई बन संवर के गुजरे तो उड़ा के फेंक दूं मैं धज्जियां गरेबां की। कोई भी शख्स तेरा नाम लेके देखे तो जबान काट लूं उस बदतमीज इंसान की।

तू मेरी आशिकी में गिरफ्तार तो हुआ, पहले तू बेवफा था, वफादार तो हुआ। दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले। वो फासले मिटाने का इकरार तो हुआ, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम। तेरी तरफ से प्यार का इजहार तो हुआ,

मेरी आंखों से मेरे दिल में समाकर तूने मुझको अपना लिया, सीने से लगाकर तूने मुझको मालूम न था दर्द मोहब्बत ऐ दोस्त, मैं था पत्थर मुझे दीवाना बनाकर तूने।

ना समझ था मैं बड़ा नादान था, ना समझ था मैं बड़ा नादान था, प्यार की तहजीब से अनजान था, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, मैं बहुत आवारा मेरी जान था।

तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

0: नहीं पहुंचा, हो गया वो कफस से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना।
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता। मायूस मेरे दर्द से सवाली नहीं जाता, अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने।

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ।

आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे। तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है।

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा

अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, ये जवानी का जमाना भी

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: जिसने चोट न खाई हो, जिसने चोट न खाई हो, वो चेहरा क्या पहचानेगा? दिल का दर्द तो यारो कोई दिल वाला ही जानेगा।

तन्हाई में रोता है, भरी महफिल में दिल हंसता है, तन्हाई में रोता है, किसी को याद करना भी बड़ा दुश्वार होता है।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।
2: मजबूरी की आंधी में घिर जाते हैं, सूखे पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं, हद से आगे लोगों की ये आदत है, वादे करके वादों से फिर जाते हैं।

मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था, मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था। दूर दूर थी खुशी और गम करीब था, धूप थी ना छांव थी, सुबह थी ना शाम थी, मेरे प्यार का सफर इस कदर अजीब था।

प्यार की उमंग भी क्या अजब उमंग है, इसके दिल से दूर है उसके संग संग है। किसको मैं सही कहूँ किसको मैं गलत कहूँ, अपनी अपनी रीत है अपना अपना ढंग है।

मोहब्बत के चमन में दिलकशी आए तो क्यों आए, गुलों में पहली जैसी ताजगी आए तो क्यों आए। सितारे आसमां की सेज पर बेहोश सोए हैं, उजाला घर में क्या हो चांदनी आए तो क्यों आए। अंधेरा ही अंधेरा हो जहां गम का बसेरा हो, वहां रूठी हुई कोई खुशी आए तो क्यों आए। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे बर्बाद कर डाला, मेरे खामोश होंठों पर हंसी आए तो क्यों आए।

अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत कोशिश करूं, फिर भी समझ में आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से होश आया है मेरी नौजवानी को, मेरा दिल और कोई चोट हरगिज खा नहीं सकता। मेरा दावा ये है उसको मसीहाई नहीं आती, मोहब्बत से जो दिल के जख्म को सहला नहीं सकता। तुम्हारे पास आंसू हैं, जहां के पास ताने हैं, इधर भी जा नहीं सकता, उधर भी जा नहीं सकता।

गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, इंसानियत हो जिसमें ऐसी अदा नहीं है। सबका है ध्यान अपनी अपनी जरूरतों पर, चाहत की गुफ्तगू में कोई मजा नहीं है। बाहर से आशनाई अंदर से बेवफाई, दुनिया में इस मर्ज की कोई दवा नहीं है। चेहरे बदल बदल के दुनिया को लूटते हैं, ये संग दिल हैं इनके दिल में वफा नहीं है।

मेरा हर ख्वाब झूठा है, मेरी हर आस झूठी है, मेरे नाजुक ख्यालों की कड़ी 100 बार टूटी है। तुम ही सोचो मोहब्बत के सफर में बेवफाई का, तुम्हें इल्जाम कैसे दूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।

मैं तुझको मीत अपना मानता हूँ, तू कितने पानी में है जानता हूँ। ज़बां पे तेरी कुछ है, दिल में कुछ है, तेरी फितरत को मैं पहचानता हूँ।

दिल का आईना चूर चूर किया, मेरी खुशियों से मुझको दूर किया, बेवजह मुझसे फेर ली आँखें, मेरी जा मैंने क्या कसूर किया।

थोड़ी सी जफा दे दी, थोड़ी सी वफा दे दी, मरने की कसम दे दी, जीने की दुआ दे दी, दम आ गया होंठों पर, उठता है धुआं दिल से, बीमारे मोहब्बत को ये कैसी दवा दे दी। तू कैसा मसीहा है, तुझको न तरस आया, एक तेरा सहारा था, तूने भी दगा दे दी।

वो सुहानी चांदनी रातें, वो सुहानी चांदनी रातें हमें सब याद हैं। चांदनी में प्यार की बातें हमें सब याद हैं। बिजलियों की वो चमक, वो बादलों की घन गरज और वो सावन की बरसातें हमें सब याद हैं। वो बिछड़ना और वो मिलना आज तक भूले नहीं, वो जुदाई वो मुलाकातें हमें सब याद हैं।

वफादार मोहब्बत के सहारे धरती पे उतर आते थे किस्मत के सितारे। सीने में सुलग उठता था एहसास वफा का, काबू में नहीं रहते थे जज्बात हमारे।

गालों पे ये काली बदलियां क्यों छा गईं? क्या किसी आवारा तितली की अदाएं भा गईं? क्या कोई अनजान राही तुझको छूकर चल दिया? तेरे माथे पे ये आखिर सिलबटे क्यों आ गईं? किस लिए तू चुप है, किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? क्या किसी दिलदार से आंखें तेरी टकरा गईं?

बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, जिंदगी मेरे लिए जैसे मुसीबत हो गई। जाने क्यों घर के दरो दीवार से बातें करूं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब ये हालत हो गई।

मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, उसकी यादों को रखा है मैंने अपने दिल में सजा के, उसकी काली काली आँखें उसका चेहरा उसकी रंगत, दिल के शीशे में फिट कर दी मैंने सबकी आँख बचा के, कैसी दूरी क्या मजबूरी कैसी आहें कैसे आंसू, झूम रहा हूँ नाच रहा हूँ घर की दौलत घर में लाके रख।

0: हमेशा की जुदाई हो गई है, हमेशा की जुदाई हो गई है, वो लड़की अब पराई हो गई है।
1: इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा था।

एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होंठों पे कभी आके दुहाई नहीं देता, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है दिखाई नहीं देता।

0: लगता है तुमने भी प्यार किया था, कहीं कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: बहुत धोखे दिए मुझको, नजर से दूर जा निकला, उसे अपना मैं समझा था, वो जालिम बेवफा निकला।

पास तुम्हारे आकर बैठूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। प्यार करूं मैं तुमसे लेकिन छूने से मजबूर रहूं।

बरसेंगे फिर झूम के बादल, बरसेंगे फिर झूम के बादल, आज नहीं तो कल। तेरा अपना होगा हर पल, आज नहीं तो कल। तेरे सर पे साया बनके फिर लहराएगा तेरी उम्मीदों का आंचल, आज नहीं तो कल। अपना ठौर ठिकाना एक दिन तू भी पालेगा, आस के पंछी तू उड़ता चल, आज नहीं तो कल। मोड़ हजारों आए फिर भी डर के मत रुकना, आगे बढ़ते रहना पागल, आज नहीं तो कल।

जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, जिंदगी कितनी है कातिल इसका अंदाजा नहीं, कौन सी है इसकी मंजिल इसका अंदाजा नहीं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है मगर कितना गहरा है ये साहिल इसका अंदाजा नहीं। वक्त का तूफान कब आएगा किसी को क्या खबर, कब उजड़ जाए ये महफिल इसका अंदाजा नहीं।

सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, मगर अपनी पहली वफा मांगता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, कोई भी रिश्ता हो उसको तोड़ दूं, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, तुझको जो देखें वो आंखें फोड़।

आंधियों का मुझे गम, ना आंधियों का मुझे गम, न फिक्र तूफा की, अगर है फिक्र तो बस अपनी जाने जाना की। तेरी गली से कोई बन संवर के गुजरे तो उड़ा के फेंक दूं मैं धज्जियां गरेबां की। कोई भी शख्स तेरा नाम लेके देखे तो जबान काट लूं उस बदतमीज इंसान की।

तू मेरी आशिकी में गिरफ्तार तो हुआ, पहले तू बेवफा था वफादार तो हुआ, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, वो फासले मिटाने का इकरार तो हुआ, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, तेरी तरफ से प्यार का इजहार तो हुआ,

अश्कों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे

0: कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूँ पल तो पल के लिए, आ निकला हूँ पल तो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ।

क्या सफर है और क्या सामान है, जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफर है और क्या सामान है, मेरे गम को भी समझ

0: आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे।
1: चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है।
0: यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है।

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा के बारे में।

दुश्मनी से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता, अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: जिसने चोट न खाई हो, जिसने चोट न खाई हो, वो चेहरा क्या पहचानेगा। दिल का दर्द तो यारो कोई दिल वाला ही जानेगा।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।
2: मजबूरी की आंधी में घिर जाते हैं, सूखे पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं, हद से आगे लोगों की ये आदत है, वादे करके वादों से फिर जाते हैं।

मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था, मंजिलों के हाथ में दोनों का नसीब था। दूर दूर थी खुशी और गम करीब था, धूप थी ना छांव थी, सुबह थी ना शाम थी, मेरे प्यार का सफर इस कदर अजीब था।

प्यार की उमंग भी क्या अजब उमंग है, इसके दिल से दूर है उसके संग संग है। किसको मैं सही कहूँ किसको मैं गलत कहूँ, अपनी अपनी रीत है अपना अपना ढंग है।

मोहब्बत के चमन में दिलकशी आए तो क्यों आए, गुलों में पहली जैसी ताजगी आए तो क्यों आए। सितारे आसमां की सेज पर बेहोश सोए हैं, उजाला घर में क्या हो चांदनी आए तो क्यों आए। अंधेरा ही अंधेरा हो जहां गम का बसेरा हो, वहां रूठी हुई कोई खुशी आए तो क्यों आए। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे बर्बाद कर डाला, मेरे खामोश होंठों पर हंसी आए तो क्यों आए।

अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अभी तुम ना समझ हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत कोशिश करूं, फिर भी समझ में आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से होश आया है मेरी नौजवानी को। मेरा दिल और कोई चोट हरगिज खा नहीं सकता। मेरा दावा ये है उसको मसीहाई नहीं आती। मोहब्बत से जो दिल के जख्म को सहला नहीं सकता। तुम्हारे पास आंसू हैं जहां के पास ताने हैं। इधर भी जा नहीं सकता, उधर भी जा नहीं सकता।

गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है, गुजरी हुई सदी की शर्मो हया नहीं है। इंसानियत हो जिसमें ऐसी अदा नहीं है, सबका है ध्यान अपनी अपनी जरूरतों पर, चाहत की गुफ्तगू में कोई मजा नहीं है। बाहर से आशनाई अंदर से बेवफाई, दुनिया में इस मर्ज की कोई दवा नहीं है। चेहरे बदल बदल के दुनिया को लूटते हैं, ये संग दिल हैं इनके दिल में वफा नहीं है।

मेरा हर ख्वाब झूठा है, मेरी हर आस झूठी है, मेरे नाजुक ख्यालों की कड़ी 100 बार टूटी है। तुम ही सोचो मोहब्बत के सफर में बेवफाई का, तुम्हें इल्जाम कैसे दूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।

मैं तुझको मीत अपना मानता हूँ, तू कितने पानी में है जानता हूँ। ज़बां पे तेरी कुछ है, दिल में कुछ है, तेरी फितरत को मैं पहचानता हूँ।

दिल का आईना चूर चूर किया, मेरी खुशियों से मुझको दूर किया, बेवजह मुझसे फेर ली आँखें, मेरी जा मैंने क्या कसूर किया।

थोड़ी सी जफा दे दी, थोड़ी सी वफा दे दी, मरने की कसम दे दी, जीने की दुआ दे दी, दम आ गया होंठों पर, उठता है धुआं दिल से, बीमारे मोहब्बत को ये कैसी दवा दे दी। तू कैसा मसीहा है, तुझको ना तरस आया, एक तेरा सहारा था, तूने भी दगा दे दी।

वो सुहानी चांदनी रातें, वो सुहानी चांदनी रातें हमें सब याद हैं। चांदनी में प्यार की बातें हमें सब याद हैं। बिजलियों की वो चमक, वो बादलों की घन गरज और वो सावन की बरसातें हमें सब याद हैं। वो बिछड़ना और वो मिलना आज तक भूले नहीं, वो जुदाई वो मुलाकातें हमें सब याद हैं।

वफादार मोहब्बत के सहारे धरती पे उतर आते थे किस्मत के सितारे। सीने में सुलग उठता था एहसास वफा का, काबू में नहीं रहते थे जज्बात हमारे।

तेरे गालों पे ये काली बदलियां क्यों छा गई? क्या किसी आवारा तितली की अदाएं भा गई? क्या कोई अनजान राही तुझको छूकर चल दिया? तेरे माथे पे ये आखिर सिलबटे क्यों आ गई? किस लिए तू चुप है, किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? किस लिए तू चुप है, किसके प्यार में डूबा है तू? क्या किसी दिलदार से आंखें तेरी

बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, बेसबब कुछ सोचते रहने की आदत हो गई, जिंदगी मेरे लिए जैसे मुसीबत हो गई। जाने क्यों घर के दरो दीवार से बातें करूं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब ये हालत हो गई।

मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, मेरी खुशियाँ मुझसे पूछो कितना खुश हूँ उसको पाके, उसकी यादों को रखा है मैंने अपने दिल में सजा के, उसकी काली काली आँखें उसका चेहरा उसकी रंगत, दिल के शीशे में फिट कर दी मैंने सबकी आँख बचा के, कैसी दूरी क्या मजबूरी कैसी आहें कैसे आंसू, झूम रहा हूँ नाच रहा हूँ घर की दौलत घर में लाके।

0: हमेशा की जुदाई हो गई है, हमेशा की जुदाई हो गई है, वो लड़की अब पराई हो गई है।
1: इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, इस तरह इश्क का पैगाम लिखा था उसने, अपने हाथों पे मेरा नाम लिखा था उसने।

एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होंठों पे कभी आके दुहाई नहीं देता, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, शायद उसे मालूम नहीं राज़े मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है दिखाई नहीं देता।

0: कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: बहुत धोखे दिए मुझको, नजर से दूर जा निकला, उसे अपना मैं समझा था, वो जालिम बेवफा निकला।

पास तुम्हारे आकर बैठूं, पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। पास तुम्हारे आकर बैठूं, फिर भी तुमसे दूर रहूं। प्यार करूं मैं तुमसे लेकिन छूने से मजबूर रहूं।

बरसेंगे फिर झूम के बादल, बरसेंगे फिर झूम के बादल, आज नहीं तो कल। तेरा अपना होगा हर पल, आज नहीं तो कल। तेरे सर पे साया बनके फिर लहराएगा तेरी उम्मीदों का आंचल, आज नहीं तो कल। अपना ठौर ठिकाना एक दिन तू भी पालेगा, आस के पंछी तू उड़ता चल, आज नहीं तो कल। मोड़ हजारों आए फिर भी डर के मत रुकना, आगे बढ़ते रहना पागल, आज नहीं तो कल।

सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, सजा कोई भी दो सजा मांगता हूँ, मगर अपनी पहली वफा मांगता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूं, कोई भी रिश्ता हो उसको तोड़ दूं, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, राह में आंखें मिलाकर प्यार से, तुझको जो देखें वो आंखें फोड़ दूं।

ना आंधियों का मुझे गम न फिक्र तूफा की, अगर है फिक्र तो बस अपनी जाने जाना की। तेरी गली से कोई बन संवर के गुजरे तो उड़ा के फेंक दूं मैं धज्जियां गरेबां की। कोई भी शख्स तेरा नाम लेके देखे तो जबान काट लूं उस बदतमीज इंसान की।

तू मेरी आशिकी में गिरफ्तार तो हुआ, पहले तू बेवफा था, वफादार तो हुआ, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, दोनों के बीच में थे जो चाहत के फासले, वो फासले मिटाने का इकरार तो हुआ, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, गम का वो दौर है ना वो तन्हाइयों की शाम, तेरी तरफ से प्यार का इजहार तो हुआ।

मेरी आंखों से मेरे दिल में समाकर तूने मुझको अपना लिया, सीने से लगाकर तूने मुझको मालूम न था दर्द मोहब्बत ऐ दोस्त, मैं था पत्थर मुझे दीवाना बनाकर तूने।

ना समझ था मैं बड़ा नादान था, ना समझ था मैं बड़ा नादान था, प्यार की तहजीब से अनजान था, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, तुझसे पहले तेरी चाहत की कसम, मैं बहुत आवारा मेरी जान था।

देगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन?

अश्कों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे शराब

ताज महल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊँ।

0: पहुंचा, फूल मियार तक नहीं पहुंचा, दामने यार तक नहीं पहुंचा, हो गया वो कफस से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना,
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर्द से सवाली

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर

क्या सफर है और क्या सामान है, जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफर है और क्या सामान है, मेरे गम को भी